अपनाथ तापना अनेकता न घायल सहत है। जाप के किए तो पायत अजाप देव भूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी के भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई राजक रहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहुरा मसीत सोई पूजाओ निवाज उई मान सब एक पे अनेको भ्रमाव है। देवता देव जा जगंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद।

ते कनु गगोट आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर गूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच बच को करेंगे भच, केतक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज मैं तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंगवासी केत मदीना मक्का निवासी, केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त, केत सुआ पे चढ़त केत दूह को भरत है। गैर में उड़त केत जल में रहत, केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चोजार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मडी मटली बहारे, वितन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित तपंत हारे, तापसी

न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे।

ंगहू बरम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपंग कहूँ नेह गृहंग कहूँ देह दोखंग कहूँ औखदि रोग के सोख सोखंग कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात के तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतंग कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जज विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ।

त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हूं कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हूं कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी

कहूँ ऋत विद्या कहूँ नाग बाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ शैल शाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजन।

परम नहीं धर्म ध्यान जेह नेह गेह नहीं ब्योतबान जेह जात पात नहीं शत्रु मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेग जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जेह रोग

जेह काल व्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेव जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अच्छा अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अग्नहोत्र कई पौ नहार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साग पै पत्र भच नहीं तदब देव होवत प्रताक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद कर।

अजरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद चार कहूँ करत जाछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही वज

कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तबदास पायत अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तबदेष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हूँ मर जा।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जहर चंग सर्व मकीन मका जह राग न रूप न रेख रुखंग जह ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेत न भेद न छेद छयंग जह जात न बात न मात वितंग जह रचयंग छत्री छत्र शितंग जह राग न रेख न रोग भणंग जह द्वैख न दाग न दोख गणंग जह अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नृगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पान गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जह अंडज सेतज जेर रचंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास।

भेवनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है सदैव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न पात चिहन वरण है, अदेक सेक भेक है सदैव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्वभरण है, जिमी जमान के भी सदैव करम परम है। अद्वेक है अभेक है, अलेख नाथ जानिए सदैव सर्व ठौर में, विशेक आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण और कुरान नेत नेत कह बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है न

न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जाच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साहगो कुमार है, न ने है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न

भेद है अभेद है नरंग है नभूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत

नकाल है न बाल है, सदीव दयाल रूप है, गंज है अभंज है अवरम है अभूत है, अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है न चित्र चयन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा छिज तेज मानिए,

न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है, न आद है न गाद है न व्याद को विचार है,

सिद्धस्पति तपस्पति बनस्पति जपस्सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विषेकिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ विखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए नजात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे।

सेज नाम सहंस वर्ण है नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सभा सुर विरोध दान सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव करत गाड़ अनंत हार हार कहे सबू।

ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच बछरव पार, सोत सोत थके महासुर।

मर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अत सिद्ध चमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणी फुंकारण ज्योत जिते सरदार विवर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहार।

खा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे। अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजानन सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सहस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट

अष्टायत बाहन बोलने बाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो सी महासुर मर्दन आदन आद गाद वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रत्यक्षण।

चछरासुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक फटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पत दो दारे मुंड मथे जाय जाय उसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल वदे सरदार विपरखण दुर्जन धरखण तुल मरखण धरम दुजे धूमराज विदुंसन श्रूणत चुनसन सोम

दादा दुरंत दुख दोख रहत जेहनेत नेज सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पुलट

करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जलधल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाय जय रूप रेह कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म कार।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है। जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम जे सुत सुंदर श्री पद्मा बदल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो भात बचावे। शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो करते कर पाप समूहन भेट न पावे। और की बात कहा कह दो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जाछ भुजंग सोतानव देवा भेव तो मैं सब ही कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल जाछ भुजंग सब है सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रमाहू को ने तही ने तह भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखेव सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बंजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आधा नादा गाधा वेग अद्वेग जप्यो तिन ही गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष सबोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे मुख कारे। दीन दयाला काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया ओसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे। गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे। आरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने। पछम के पछमी पछाने निज काम है। मराठा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे। देड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रूहेले माघ देश के मंगेले वीर। बंग सी बुदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गो न गावे चीर मचीन के शीस न्याव। तिब ते धे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें दोह जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश। गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हथ की पुकार पल पाछे पहुँचत है। जिट की जिंघार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार। किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन के